ये चेंडा कहते हैं कहता रहेंगे बेसी दाना वाला नहीं देगा दाना वाला नहीं चाहिए क्या बीसू भी खाली बीसू भी बोलो माय डैड व्हेन ही इज ओनली 14 ही केम टू इंडिया Hey, can I? आपका क्या नाम हुआ? Hello. Because of the World War II, there's no way to go, and they recovered that Kolkata, India is a very good place, and it's easy to earn living. So he came to Calcutta, and from then he stay in India. He never.

0: wants to go back to China again.
1: बस 20 किलो आप लेते हैं बस
0: भिंडी अच्छा नहीं लग रहा है, आधा किलो भिंडी दे. Donna,

अच्छा गौरव कल मंडे का 4 बजे हम लोग का ट्रक को अरेंज करना है. हम लोग एक इनोवा जाएगा तो एक छोटा हाथी से थोड़ा बड़ा वाला है ये वाला ऐसा वाला. हम लोग का पूरा टीम आधा टीम वहाँ में जाएगा और किसी को आपका साथ गाड़ी में बैठ जाएगा. टिटिक बाजार, टिटिक बाजार, टुंगान चर्च का सामने.

0: Okay, pani piyo. 5 minutes rest.
1: So beat ko sun lega. Feel karna hai beat ko. Aur root ka thoda sa ye karna hai. Piche.
2: Sir bahut disciplined hai, punctual hai. हम लोग को गाइड करते हैं, अगर कुछ होता है मतलब कुछ हम लोग का मिस्टेक होता है या हम लोग का कुछ रॉन्ग होता है तो हम लोग को गाइडेंस करते हैं कि हम लोग अगर बाई चांस कभी हम लोग नागा करते हैं या बंक करते हैं तो उसके एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ ऐसे बंक करना, बंक कर रहे हो तो अपने आप से कर रहे हो, हमसे नहीं कर रहे, टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करने के लिए.
3: ऑल देयर लाइफ दे हैव बीन स्टेइंग इन वन स्मॉल community, they never seen the world outside. So if they go out, they open up so many doors for them. They get lots of ideas. In the future, this thing is going to pass down to the next generation because I don't want to just do it and finish when I'm no more or I retire. I want to continue to go on to pass it down to generation to generation.